माटो माथी बालुई मन को बाती डल्ला फर्कई फर्कई धाड़ा मर्कई मर्कई।